0: ekska if kawa olengo ipangom tanu kuchu awngo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangna ko sin de ke olengo chi chang tanu ku ma khama ko da akwe ale ko program ngo mtu tu ku ngo olengo chi chang ko sa ko wisi se ka ke a olengo ko nga ke kawe tu khai se pangna ko si de olengo mtan chong ngo ko nga da ko si de kwang khang ngo su pa ke फिरिन धरता खमनि दे मुगे कबांग वले नुय ये तेन गुन हु आ चितवा अंकुए सा कवि जिगे अंग कोन का के राधु कुए सिदे के कब वले नोय तन छोंग मा के कनु जि से अगु नाइ दे के वला मा जि चान तेन गुन मा थम गुए दगा कोन मा दे कनु से अगु सिदे के खसुनम औला कब चिंग मउ दुले कनु से अगु सिदे के मुमन छो छिंग ओ अमन हु गुया के जि चा खसुन औला वो जि के तन छोंग वाला गुए सा गु जि से का के राधु के कवे तो खै सि पंग मा गुए खै क्वारा दु के निमुरु या वने तन सेव पेन नेखा एफएम मन तु तु के अंग वाला मा वा अंगुए सा गु सि का कोन का के राधु के क्वांग खन गु सुपा के 3 एन देर तक मनीते हम कोई तो अंग वाले में तन हो जित तब के मंग मा सो तन दु तो ओलांग
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.